यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल्मा का एवरीडे 5 AM का 6 PM जिन्हें ऑलरेडी होगा

मारता है मारा जाए ये हमको कुमार कुमार का हो डेंबा में गुरु मोहा डाचे काचे ये मारता है वाना चाहे वांगा हो चल चंबेर कोयम जो मावंडी बाका